0: Station One. Studio Dancer.
1: अहिले बिहानको 10 बज्यो।
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु का साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98161 95301।

उसके बाद मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा तो फिर दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, जिसके लिए मैंने जमाना छोड़ दिया।

दिल से आज भी इस बात का सदमा नहीं जाता कि एक खत है जो हमसे आज भी लिखा नहीं जाता। उसको इतनी जल्दी किस बात की थी कि चला गया वो, हमको तो उससे नजरें फेरना भी नहीं आता। न जाने किसकी बात में आने लगे हैं, जब से आने लगे हैं दूर जाने लगे हैं वो। अभी तो उनका हाथ मेरी हथेली में था, फिर मुझको क्यों याद आने लगे हैं वो। मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो दिया कि उनके दर्द का ख्याल करूं, नजरअंदाज किया कि शामें कहां बीतती हैं उनकी। ये अच्छा हुआ कि बिछड़न ने आपको नहीं तोड़ा, हम जानते हैं टूटकर हड्डियां भी नहीं बचती किसी की। खैर इस सब के बाद भी अगर आप चैन से सो जाते हैं, फिर आपसे क्या गिला करें कि आप हर किसी के हो जाते हैं। हम मुकद्दर के हारे सही, लेकिन मोहब्बत में सिकंदरों को भी हराते हैं।

0: देशमा पेट भरिने बोनस चाउचाउ।
1: पोखरा नुडल्स प्रालीको उत्पादन बोनस चाउचाउको आधिकारिक विक्रेता थापा सप्लायर्स, शुक्ला गण्डकी साथ सेरा, प्रोप्राइटर राजबहादुर थापा, मोबाइल 9850202779।
2: प्रणाम, अभी अपने सुनतनी रेडियो ढोरबराही 103.8 मेगाहर्ट्ज़ अंतर मन की आवाज।

0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज।
1: स्टुडियो टाइमचेक अहिले दिउँसोको 4 बज्यो। टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ। प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301।

0: कहाँ बढ़ के कहाँ कहाँ पुगे कहाँ कहाँ बढ़ के कुन बाटो सही कुन गलत सोची रहे छु माफैले आफैलाई खोजी रहे छु।
1: कति सुन्दर लय यसको। अन्य
0: अन्य चाहिँ यस्तो छ म्याम, सोचे जस्तो जीवन हुन रहेछ कहिले के आखिर गरेन जीवनमा मैले, सोचे जस्तो जीवन हुन रहेछ कहिले के आखिर गरेन जीवनमा मैले, कति मन्दिर धाएँ